ए नरक अन्न रुलिंग कुदि कुदि वेदां कैरी वेदे काफिरुंगे फौजे ए नरक एल्लवा कुम्मे फहरकु एतांगे बंडेरिंग एवरेन्ना सुवालु कुरव्वानेते इंजारु कुरव्वा रसूलकु त्यबै मीहुंगे गाता वडे नुगन्नवा हिये।